0: दीपनारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
2: जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन दार

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

सत्स परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाहं करत प्रभुदे करत महा

हरि ओम। नाउ स्लोली लाइक दिस फ्रॉम अबव 10 सेंटीमीटर अबव द कैंडल यू ब्लो ऑफ द फ्लेम लाइक दिस। वेरी गुड, थैंक यू। सो टुडे प्रैक्टिस इज फिनिश्ड and wish you all the best.

And Kunti said that Bhaktas and other people, it is said, Sukh par sila pade, Sukh par sila pade, Naam hirde se bisraay. और दुख दुख होता है सुख पर शिला पड़े नाम का विसराय. आई पुट ए बिग रॉक ऑन देम हु डू नॉट रिमेंबर द गॉड. एंड दुख पर शिला पड़े गांव भगवान का नाम तब बार बार सुख देते हैं. सो सुख पर शिला पड़े नाम नाम बिसराए. भगवान राम का नाम भूल जाता है. फॉरगेट्स द गॉड्स नेम व्हेन यू आर वेरी हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग. यू आर गोइंग टू द समवेयर इन द आई डोंट नो मेनी मेनी होटल्स एंड व्हाट एवर इट इज देयर. या you go and dancing and drinking and then you forgot. But you forgot a God. That's why ki dukh par aur sukh par sila pade. Or when you have troubles, then you remember God. When we have problems, then we say, oh God, oh please doctor, I'm sure. I hope God will God help me. Said, yes, doctor, I will. Oh God. And where before you, before 5 years, neither doctor nor God did not know who is there. Eh? So this is when trouble is, then we remember. When we have pain, then we know our body. When there is no pain, we don't forget. Or we forget, we don't think of our body. Eat. So this is that we remember, therefore, God. Jesus, there was a day, and Jesus began to cry. And even they came to

0: अलख पुरी जी महादेव की जय। देवाधि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: की जय।
1: जय हो भजन मंडली की जय हो। अर्जुन एनीथिंग यू वांट टू से कम।
2: अर्जुन želiš li nešto reći? Hvala.
1: Yeah, come. Huh?
3: Talking.

ओम शांति शांति शांति सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वपुरी जी श्री पिता कारा की जय। श्री सर्वपुरी जी श्री दपि परम्परा की जय। देव दि देव देवपुरी जी बाबा कैलाश की जय। श्री श्याल दिया भगवान श्री नाम प्रभु जी चतिकातु बैकातु की जय। श्री श्री स्वामी मदन जी भगवान निपल जनम पलिदिस की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वपन सुखदेवा की जय। परम पूज्य महामंडल स्वामी जी महाराज की जय। महामंडल स्वामी गणेश पूजी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी पुरी जी महाराज की जय। ससंदा की जय अत्यनंद की जय। ससुन समी जय पति पतम दे वशंभू।